लोहे दे कोट दे नाल मड़िया पिया सी, सतगुरु दे खंडे दा वार होया अते चीरदा होया खंडा, उदे शरीर नू चीर गया, डिग पिया कावली वीग, फौज दे विच भाजड़ पै गई, 35,000 चढ़ के आए सी पर सौवां दी गिणती दे विच ही बची। जिहड़ा हसन खां सी महाराज ने आख्या सी, हसन खां घबरा ना, लाहौर दी सूबेदारी तैनू ही मिलनी, इकट्ठी फौज करके जदों जाके बादशाह दे अगे पेश होया ते उहने उस नू जदी काबल वल घल दिता अते लला वेग दी जगह ते उहनू सूबेदार बना दिता गया। इधर सतगुरु महाराज ने सिंघां दा पंथ प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तवारीख गुरु खालसा दे विच जो जिक्र करते ने 1276 के लगभग जिहड़े सिंह सी शहादत का जाम पी गए उन्हां दा संस्कार किया, जिहड़े इस्लाम नूं मन्नण वाले सन, बहुत वड्डा एक टोआ पुट के उन्हां दीआं लाशां नूं उहदे विच दफनाया गया अते अज उस अस्थाना ते साडे अस्थान ने गुरु के प्यारियो अते गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां जांदियां ने उत्थे नतमस्तक हुंदियां ने। इह तीसरा जंग जो माघ दे महीने सतगुरु मीरी पीरी दे मालक ने मालवे दी धरती ते लड़िया अते सूरमियां नूं सरोपाउ दित्ते गए, जिन्हां ने जान तली ते धर के भावें शरीर जख्मी होए सी उन्हां दी मलम पट्टी होई है। इह जंग दे विच पैंदे खां नूं नहीं सी बुलाया सतगुरां ने। आओ सारी संगत दा धन्नवाद, गुरु महाराज साहब दीआं हाजरियां प्रवान करे, आनंद साहब दा पाठ अरदास बेनती च जुड़िए जी। आओ रल मिल के आनंद साहब दा पाठ करिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

सर्ग है, अनिल है, नाद है, अजय है, अजाद है, जन्म है, मरण है, भूत है, वरण है, अगंज है, पांज है, अगंज है।

अनास है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुमिंद है, लिख है, दिख है, लिख है, पीख है, अटा है, गा है, संभ है, गंभ है,

अरनरिया खंड पर नरिया मंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण परना जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन आपंग उपमा अपार गात्मित उदार जल थल या मंड देसवे अपंड जल थल महंता देसवे सबियंता

करुणाले है और काले हैं, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मनमानिय है, जग जानिए है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्ववासीय है, सर्व

दुष्ट जते उठवत उत्पाता सगल मरेश करो रनकाता दिया तुरता शरणी पारे दिन के दुष्ट दुखता हवे मरे पुरख जवन पापरे तिहारे तिनके तुम संगड़ सबटारे जू कर करो एक बात आए हैं ताकि कार निगण है रक्षा हुए त

ते लेहु बचाई। कृपा करी हम भर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। कृपय सकल दे को हृता, दुष्ट दुखियन को शय करता। श्रीया तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ अरकाला। मन भाषण फल पावै सोई, दुख नाथ सै बेआपत कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूड़ चित लाए चतुरता आवई।

पाई। संबल सत्रह साहब बणिजा अर्ध साहब दीन कहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रवा राती सत्र।

0: पक्की सारी है, जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण को सामने विसारी है, अपना ती अपना आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी है।
1: आसा महला चौथा

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई
1: मन मोहा नाम तेरे संग सहाई
0: महाप्रयान दूत जन दल
1: तै केवल नाम संग तेरे चले
0: मुश्किल होवे अत भारी
1: हर को नाम के माए उधारी
0: उन्हें चरण करत नहीं तर
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे
0: सृष्ट को राजा दुखिया
1: हर का नाम जप्त होए सुखिया
0: बंधन पर
1: हर का नाम जप्त निस्तर
0: निक माया रंग तिख न बुझावे
1: हर का नाम जप्त कहावे
0: जात अकेला
1: तै हर नाम संग होत सहेला
0: नाम मन सदा ध्याई है
1: नानक गुरमत पारंगत पाई है
0: जप्त नहीं कोट लख बाहे
1: नाम जप्त तै पार पराई

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान योग अभ्यास कर्म तर्म किरिया
1: सर्व त्याग मन मध्ये क्रिया
0: अनेक प्रकार किए बहु जतना।

0: अखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
1: महाउदासन
0: माहे होमत प्राण
1: गण का सब है भरपूर दान
0: न्योली कर्म करे बवासन
1: जय मार संयम
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तो भी हो मैं मैल न जावे
0: हर के नाम सम सुर कछ नाही
1: नानक गुरमुख नाम जपत कत पाहि
0: मन कामना तीर्थ दे छूटे
1: गर्व माना मते हुटे
0: सोच करे दिन से अर रात
1: मन की मैल न तनते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कहु न भिक्षा टरे
0: जल तो वह बहु दे अनहित
1: शुद्ध कहाँ होए काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहुच
0: बहुत स्याणप जम कह पौ व्यापे
1: अनेक जतन का तृष्णा त्रापे
0: पेख अनेक अगन नहीं बुझे
1: कोट पाल जल गए नहीं सीजे
0: छूट स्नाही उब पयाल
1: मोहि व्यापे माया जाल
0: अवर कर तूत सगली जम डाने
1: गोविंद भजन बिल तल नहीं माने
0: हर का नाम जप्त दुख जाए
1: नानक बोले सहज सबाए
0: चार

0: अपनी शोभा लोरे
1: साथ संगे होमे छोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साथ जना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साथ संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिये सबते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाते कट कट चीना
0: माने अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जम सम दृष्ट

0: जाने
1: अपनी गत मित जानो आपे
0: आपन संग आप रवराते
1: तुमरी उस्तत तुम ते होए
0: नानक अवर्ण जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल किरिया में उत्तम किरिया
0: सा संग दुर्मत मल हिरिया
1: सगल उद्यम में उद्यम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी में अमृत बानी
0: हर

0: प्रसाद असवारी
1: को कबू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मलक तना
1: राख प्रोय प्रभ अपने मना
0: जिन्त रीमन बंत बनाई
1: उठत बैठ सत से त्याई।

0: भावक का सहज स्वभाव
1: ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैं न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तारु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए
0: नानक जिन प्रभाव करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा व्रत भाषी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म

0: सदा सद जागत
1: राम ज्ञानी अमृत त्यागत
0: राम ज्ञानी के मन परमानंद
1: राम ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: राम ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक राम ज्ञानी का नहीं विनाश
0: राम ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: राम ज्ञानी एक संग हेता
0: राम ज्ञानी के होए चिंत
1: राम ज्ञानी का निर्मल मंत
0: राम ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
1: राम ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: राम ज्ञानी का दर्श भागी पाइये
1: राम ज्ञानी को बल बल जाइये
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक राम ज्ञानी आ परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की कीमत नाहे
1: राम ज्ञानी के सगल मन माहे
0: राम ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: राम ज्ञानी को सदा आदेश
0: राम ज्ञानी का कथिया न जाए दे आखर
1: राम ज्ञानी सर्व का ठाकर।

0: मिथ्या नाही रसना पार्स
1: मन में प्रीत नरंजन दर्श
0: पात्र रूप न पेख

0: रंग तैसी सुमाटी,
1: तैसा अमृत तैसी खाटी,
0: तैसा मान तैसा अभिमान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वर्ताए साई जुगत,
1: नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाव,
1: जित जित का राखे तैसा तिन नाव,
0: अपे कर्ण करावन जोग,
1: प्रापा वैसोई फनोग,
0: श्राप होए अनंत तरंग,
1: लगे न जाए पार ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा

0: करते की जाने करता रचना।
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए,
0: कई कोट पाथर वृक्ष निकलाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र,
1: सुमगरी अपने सूत तारे,
0: नारद जिस तिस पावे तिस तिस निसारे,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद प्राण सिमरता शास्त्र,
1: कई कोट किए रत्न समुंदर,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत्र,
1: कई कोट किए चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी में स्वर दीवे,
1: कई कोट जखे किनर पिसाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर नरगाच,
1: सबते नेरे सबते दूर,
0: नानक आपे पटिया भरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग नवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,

0: अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार
0: जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: को कैसे गवे
0: वापस को जो पला कहावे
1: जिसे पलाई आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: और नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझसे कुछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब जाने मैं कुछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत
0: लग मोह मगन संग माहे
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: और प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस फटेला को उठतावे
1: आवे माया पाछे पावे
0: के करे
1: नावे खप खप भरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिथे सब काजे
0: राम रंग सर्व सुख होए
1: बड़भागी किसे प्राप्त होए
0: नानक रावण आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: नानक रावण करणे हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभ सोए
0: कीनो सो अपने रंग
1: सब ते दूर सब के संग
0: जे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: इन बिन से आवे ना जाए
1: नानक सदी रहा समाए
0: आप उपदेशे समझे आप
1: आपे रचिया सब के साथ
0: आप कीनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका करने हार
0: से पेन कहो किछ होए
1: थान तनंतर एक कै सोए

0: बिना मैं तकी लोथा
1: के दुखी की जड़ किछ नाही
0: आपन बीजा पे ही खारे
1: के दुखी को अबर न राख न हार
0: नानक संत पावे ता लए अवार
1: संत का दुखी हों बिलाए
0: ज्यों जग

0: दंडन हार गोपाल
1: सर्वज्ञा के प्रतपाल
0: कहता जस मन माहे
1: जिससे बेता कोई नाहे
0: मन मेरे सदा हर जाप
1: अविनाशी प्रव्यापे आप
0: अपन किया कछु न होए
1: जेसो प्राणी लोचे कोए
0: जिसमें नाही तेरे कछ काम
1: रत नानक जापे कहर नाम
0: बंत होए नाही मोह
1: राखी जो सगल कट सोहे
0: बंता होए क्या को घर में
1: जा सब कुछ किसका दिया दर में
0: सूरजे को कहावे
1: रब की कला बिना कहता वे
0: को होए बह दातार
1: जिस दिन हार जाने का वार
0: बहुत प्रसाद टूटे हो रोग
1: नानक सोजन सदा रोग
0: अंदर को थम में थमन
1: देव गुर का शब्द मने अस्थमन
0: खान नाव चढ़ तर
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
0: जो अंधकार दीपक प्रकाश
1: दर्शन देख मन होए विलास
0: उद्यान में मार्ग पावे
1: जो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
0: तन की बाछो तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मूर्ख काहे बल लावे
1: प्रभु के का विद्या पाईए
0: सुप्रभ देवन हार
1: अवर त्याग तू किसे चितार
0: कठ करे सोई सुख मान
1: उला काहे फिरे अजान
0: मस्त आई तेरे संग
1: लाट रहो रस लोभी पतंग
0: नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे ती कर जाहे
0: पखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर

0: राजा की दृष्टि मा है
1: और मृदे का लेना पाए
0: सब किछ तिसका ओ करने जोग
1: जिसमें दूसर हुआ न होग
0: जन सदा सदा दिन रहनी
1: सबते ऊच निर्मले करनी
0: कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल दिया
0: के मन गुर की प्रतीत
1: जिस जन आवे हर प्रचीत
0: भक्त सुनिए तह लोए
1: जाके हृदय तो
0: करनी सच ता की रहत
1: सच हृदय

0: हल्त पल्त सवार है।
1: नानक सतगुर सिखो जी नाल समार है।
0: गुर की ग्रह सेवक जोर है।
1: गुर की आज्ञा मन में सह।
0: आपस को कर कछ न जनावे।
1: हर हर नाम हृदय सत्यावे।
0: मन में जय सतगुर के पार।

0: भागी पाइये
1: दर्शन पेट पनीत
0: परस जंगत निर्मल रीत
1: संग राम गुण रवे
0: पार राम की दरगह गवे
1: शंकर वचन कर्ण आगाने
0: मन संतो का दंपति आने
1: गुरु अखियो जाका मन

0: चम्पी त्रास कहो किस होए।
1: गत गोचर प्रभ एका
0: तचित गुप्त किस पूछ देखा।
1: नाथ नरंजन गोचर आगादे
0: सा कौन छुटे कौन बंधन बाधे।

0: संग अंतर प्रभ नीठा
1: नाम प्रभु का लाता नीठा
0: समग्री एक सकट माहे
1: अनेक रंग नाना दृष्टाए
0: नद अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: माद अनहत नाद
1: कह न जाइए चरित्र समाद
0: क्या जस आप दिखाए
1: नानक तेजन सो जी पाए
0: तो अंतर सो बाहर अनंत
1: कट व्याप रहा भगवंत
0: माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
0: पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी बास अंतर माहे
1: चार कुंड दे जिसे समाये
0: रिश्ते पेन नाही को ठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख
1: सस्य सूर्य कतर मैं एक
0: पानी प्रभु की सबको बोले
1: आप ढोल का घूंढोले
0: सर्व कला कर खेले खेल
1: मोल पाइये गुणे अमोल
0: जोत में जाकी जोत
1: तारे हो स्वामी ओत पोत
0: प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन में यो विसास
0: जना का पिखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुनो सब वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी ए रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: होए सोई सुख मन
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार पियो ही
1: नानक दर्शन दे सामोही
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्रभ ते सगली उत्पात
0: भावेता करे बस थार
1: इस भावेता एक अंकार
0: कला लखी न जाहे
1: जिस भावेत सलय मलाए
0: कावन नेक्ट कवन कहिया दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर गत जिस आप जनाए
1: नानक तेजन आप बजाए
0: भूत आप वरतारा
1: सर्व नैन आपे कन्हारा
0: कल समग्री जाका तना
1: आपन जस आप ही सोना
0: आपन जाने के खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की नी माया
0: के मत अलेप तो रहे
1: जो किश कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जापा वैता लय समाए
0: ते होए सुनाही बुरा
1: ओए कहो के ने कछ करा
0: आप लाकर तू तत की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साग तारी सब साच
1: ओत पोत आपन संग राज
0: कदमत कही न जाए
1: दूसर होए तसो जी पाए
0: इसका किया सब परवान
1: और परसान नानक जान
0: जो जाने तस सदा सुख होए
1: आप मलाए लय प्रभ सोए
0: धनवंत कलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस पर सासा जग तराया
0: हावन का यह सुआओ
1: जग के